सूत कलह न कीड़िया तू चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया तू पार बसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो।

अजामल दा पिता सोचदा है अजामल वड्डा होवे पढ़ लिख जावे ते मेरी जगह राजे दे दरबार विच ए भी कथा करया करे अते जिन्ना इज्जत मान मेरा है इस तू वद इज्जत मान इस नू मिले। अजामल कुछ वड्डा होया अजामल दा पिता अजामल नू पढ़न वास्ते पाठशाला विच लै गया। पहले दिन अजामल पाठशाला पहुंचिया

जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो। जे गुरु रोकदा किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने घरों तैयारी की थी, घरों तुर पिया अजामल। शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा। कलावती नाम दे इक वेसवा हार शिंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देख लिया, तुर गया। पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंची है, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विचों निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी। ते कलावती नाम दी वेसवा ओ हाली भी बैठी है। उस वेसवा नू देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोज दा काम बन गया वेसवावां दे बाजार विचों आना, वेसवावां दे बाजार विचों जाना। ते हौली हौली ए अजामल कलावती नाम दी वेसवा कोल जान लग पिया। ता मन जिहड़ा सी पढ़ाई वल्लों हट गया। शरीर भी हुण तंदुरुस्त ना रहा। पढ़ाई विच भी पिछे। गुरु नूं पता लग गया कि अजामल जिहड़ा है

जाल लगांदा है, पंछी पकड़दा है। कुछ पंछी मार के सब्जी बना लेंदे ने, कुछ पंछी वेच के आटा दाल ले आंदे, गुजारा करदे। जड़े पुत्र पैदा हुए ओ भी माड़े कर्म करदे ने। अजामल दा शरीर रोगी हो गया, क्यों के गुरु साहिब जी बाणी विच कहंदे ने, दुख तदे जा विसर जावे। जदो इंसान परमेश्वर नूं भुला देंदा है, परमेश्वर दा डर मन विचों कढ देंदा है, फिर पाप करदा है। ते जिहड़ा पाप करन वाला है, अंत ओ इन्ना दुखी हो जांदा है कि पछताण दा मौका भी नहीं मिलदा। कई वारी अजामल शरीर रोगी हो गया, पुत्र भी पापी निकले। छे पुत जाए वेसवा, उस वेसवा ने छे पुत्रां नूं जन्म दिता, पापां दे फल इच्छे लिया। पाप कीते सन ते पापां दा फल पाप ही मिलिया। अत दे दुखी हो गए ते हुण सोचदे ने, गुरु दा कहना नहीं मन्निया, पिता दा कहना नहीं मन्निया, ते आप भी दुखी ते औलाद भी

जमगण मारे हरजना गया सुरग जम डंड ना सहया। जमगणा नू देवत्या ने हरी दे जना ने पिछा कर दिता।

अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी जपजी साहब दी इतनी महानता है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सतसंग जी जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते, जिवें एक पिता पुत्र नूं कोई भी चीज संभालण वेले कुछ गल्लां भी रमजदियां दसदा है, गुरु नानक साहब ने जदों गुरु अंगद साहब दे हिरदे विच जोत टिकाई ते

जी ने आ वचन कीते की वचन कीते अनेकां सिख आउणगे तुहाडे कोलों जेड़े हाथ जोड़ के हाथ टड के सिखी दी दात मंगणगे ते जिन्नू भी सिखी दी दात दोगे ते एक उपदेश नाल जरूर देना ओ केड़ा के भाई अमृत वेले उठ के इशनान करके जपजी साहब दा पाठ सावधान होके करना है। जेड़ा भी सिख बनन दी अभिलाखा लेके आवे ओनू ए उपदेश जरूर देना किवें वेरवा दिता है। श्री मुख ते महिमा पुन भाखी जो नर है सिखी अभिलाखी जेड़ा भी नर सिखी दी अभिलाखा लेके आवे निसमें उठे से करे सनाना जप पढ़ है एक चित सावधाना ओनू ए उपदेश देना पई सवेरे उठ के इशनान करके जपजी दी बाणी सावधान होके पढ़नी है ता तू सिख है। आखो सतनाम श्री मुख ते महिमा पुन भाखी जो नर है सिखी अभिलाखी निसमें उठे से करे सनाना जप पढ़ है एक चित सावधाना वचन गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी नाल करदे होए जपजी दे बारे क्योंकि दास वही विचार ले रहा। एक होर वचन कीता गुरु नानक जी ने गुरु अंगद जी नू के गुरु अंगद जी धरती ते लोक अपनी कामना दी पूर्ति लई तीन चीजां दा सहारा लैंदे ने एक जंतर दा एक मंत्र दा एक तंत्र दा। आखो सतनाम ये तीन चीजां दा लोक सहारा लैंदे सात संगत गौर करियो जंतरां दा मंत्रां दा ते तंत्रां दा ते धन गुरु नानक गुरु अंगद साहिब जी नूं कहण लगे मैं दुनिया नूं इक इहो जी दात दे चलिया वां के सारे जंतर मंत्र ते तंत्र ए जपजी दी बाणी दे विच ही ने। आखो सतनाम मेरे सिख नूं किसे जंतरां मंत्रां तंत्रां दी लोड़ नहीं जपजी पढ़ लवे सब कुछ विच आ जाएगा। सतसंग जी किवें इहदा वेरवा दित्ता है धरे कामना पढ़ है इक मन कोई कामना तेरे अंदर है जंतर दा सहारा ना लै किसे मंत्र दा सहारा ना लै किसे तंत्र दा सहारा ना लै जपजी दा सहारा लै की आखिया धरे कामना पढ़ है इक मन होए संपूर्ण तैं की तत छिन कोई मन विच कामना पढ़ जपजी कहंदे तत छिन विच तैनू प्राप्ति होएगी अगो की कहंदे जंतर मंत्र पुन तंत्र महाना। आखो सतनाम है ए जपजी दी बाणी सारे जंतरां मंत्रां तंत्रां तो महान है ए गुरु नानक जी कह रहे गुरु अंगद साहिब जी नूं उहनां नूं नहीं कह रहे सानू उपदेश दे रहे ने सिखा जंतर मंत्र पुन तंत्र महाना भूत जे प्रेत दैंत बलवाना

चंगा कम नहीं किया, ना सेवा की, ना नाम जपे, ना परपकार किया, ना किसी का भला किया। हुण लेखा सारा काला है, कोई ऐसा अक्षर नहीं कि जो एदा साफ होवे। हुक्म होया धर्मराज वलों के जमदूत उस नूं नरकां विच लै जावो, उन्हां नरकां विच लजावो जिन्हां नरकां नूं कुंभी नरक कहा है। जिवें घड़े दा मूंह छोटा है ते अगे घड़ा घड़ा वड्डा है, जिन्हां नरकां दी बाबत जिन्हां नरकां दा नक्शा गुरु महाराज ने बाणी विच लिखिया है कि ओ नरकां दे जीवां नूं किन्ना क दुख है। फिर दुखी हो के ओ की करदे हन, पापी कर्म कमांदे ते करदे हाए हाए आओ सारे पड़िए, नाले अपने मन नूं समझाइए मना कि ते ए नरकां च ना जाना पैदा। नरक है जरूर, किते एवें ना समझे कि नरक है ही नहीं। ए बाणी दसदी है, किसे कोई बंदे दा कहना नहीं, ये निरंकार का मुखार बिंद है।

अंदर जाके सोता है। एडी गूढ़ी नींद आई है, ये एक बारी पासा भी नहीं पाई। निरंकार ने वडेरी अवस्था विच इको एक पुत दिता है, और उसनु कोई ना कोई रोग लगा ही। कोई उसनु चला कहता है, कोई दीवाना कहता, कोई बावला कहता। मैं चुप कर गया। मैं खामोश हो गया। लोकां दे बच्चे खेल दे सन, पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल। होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगते, पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं। तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं खाते, पता नहीं कीड़ा रोग। अंदर जाके सोता है, तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया ही। जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके, तो ममता की मारी हुई मां माता तृप्ता रे मुंह च बुरकी नहीं पाई। जिस मां का पुत भुखा सो जाए, उस मां नू नींद नहीं दी। पुत सो गया है, मां जाके उठाती, काका भुखा क्यों सो गया? एक बुरकी तो मुंह च पाए, मां दी आंदरा ठर जाए। बच्चा रज के प्रसाद छक लवे, मां पहले रज। ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत। माता तृप्त इना ख्याल इना विचार विच, क्योंकि माता तृप्ता हजूर नु पुत्र ही सुन। गुरु नानक एक और वेखण वाली वखो वक, तृप्ता ने जाने सुत, कालू ने जाने पुत, लालू भतीजा जाने मूले जाने ए जवाई, चंदो रानी जाने सरबंदी, जयराम साला जाने पर बेबे नानकी ने जानिया रब रूप मेरो भाई। श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर, पराए बुलार को प्रतीत भली आई है। श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप, ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक को, जिन्हां नूं भावना की रोशनी दी, जिन्हां नूं भावना की लाइट नहीं मिली, उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई है। भावना सब तो वड्डी चीज, जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया, उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मिल गया। विश्वास ही वड्डी चीज, विश्वास ही सब तो वड्डी चीज। असि कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मत्था भी टेक,
ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਚਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ

भी ऐसा होना चाहिदा है जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे ते साई फरमान करदे हन कि ऐसा शाह इको एक परमात्मा है जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे ऐसे शाह बारे साहिब फरमान कर रहे हैं।

हमारे आप परमेश्वर कहायो पाठ अपने इस शब्द के धन गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं लिखते ने ओ जोत रूप हरि परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरि जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक का नाम लैके प्रगट होए उस हरि उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक साहब

कृपा तार अमर सतगुर थिर की। गुरु अंगद ने कृपा करके अमरदास गुरु अमरदास बना

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नू मिलनी, पर मिली भी कालना करके। गुरु अमरदास हर साल गंगा

कोई समागम ना होवे मैं किस तरह जा सकती अपने गृहस्थ जीवन विच। जे आपां सुखी वसना है तो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पवेगा। वड्डियां दी आग्या, वड्डियां दा कहना मनना फर्ज बनता है, पर नाल इक गल इह भी है कि वड्डियां नूं भी छोटियां दी भावनावां दा ख्याल रखना चाहिए। दोनों पासे प्यार होवे तो जीवन का आनंद कुछ होर होता है। अमरदास कहन लगे, बेटा तेरे सस सहुरे मैं पूछ लेना, तेरे पति को इजाजत भी मैं ले लवांगा, ते तुहाडे पिता गुरु अंगद साहब के चरणों से सिर रख के मैं उन्होंने मना लवांगा कि बीबी अमरों नूं मैं लेके आया, क्योंकि मैं गुरु वाला बनना है। इस तरह अमरदास जिन्होंने आप हुण गुरु अमरदास कहने हैं, अपने पिंड तो खडूर साहब चल पे। जद खडूर साहब पहुंचे, गुरु अंगद साहब संगतां दे नाल बैठे हुए ने, दूरों तक लिया कि साडा गुड़म अमरदास आ रहे हैं, क्योंकि भरा दा भरा भी गुड़म ही मनिया जाता है। गुरु अंगद साहब ने आसन दिता कि साडे गुड़म दा भरा कोई भी गुड़म ही लगा गुड़म आया है। जल सिंह आसन दिता बैठ

उम्र विच आ के सेवा की, लंगर च भांडे मांजे, लंगर पकाया, झाड़ू फेरिया और कठिन सेवा लई रोज सवेरे कुछ मील चल के प्यासा दरिया से जांदे ने, पानी दी गागर भर के फिर वापस आके पैदल गुरु अंगद साहब नू रोज

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगद्दी

मन विच हंकार नहीं आया। गुरु नानक साहब दे साहिबजादे बाबा श्री चंद गुरु रामदास जी नूं मिलन आए। गुरु रामदास जी का दाढ़ा बड़ा लंबा सी ते बाबा श्री चंद कहन लगे रामदास इन्ना लंबा दाढ़ा इन्नी लंबी दाढ़ी क्यों वधाई? होर कोई हुंदा उहदा जवाब कुछ होर हुंदा पर गुरु रामदास का जवाब की सी? एक हथ दे नाल अपनी दाढ़ी फड़ ली, एक हथ दे नाल बाबा श्री चंद दे पैर फड़ ले, अपनी दाढ़ी दे नाल बाबा श्री चंद जी दे पैर झाड़न लग पे गुरु रामदास। ते नाले कहंदे ने बाबा जी तुहाडे वर्गे महापुरुषां दे चरण झाड़न वास्ते ये दाड़ा वधाया होया। तां बाबा श्री चंद कहन लगे रामदास अगर ये निम्रता साडे विच हुंदी ते असी गुरु ना बन जांदे। पट कह रहे ने ऐसे गुरु किथे मिलनगे, इस वास्ते सारे दर छड के इन्हां दे दर आ पए आ। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो। हुण गुरु रामदास ने कृपा की। गुरु रामदास जी दे तीन सपुत्र सन, वड्डे बाबा पृथ्वी चंद, उन्हां तों छोटे महादेव ते तीसरे अर्जन देव, जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अर्जन साहब कह के याद करदे। वड्डे दोनों पुत्र ना सेवा वाल ध्यान ना हुक्म मनन वाल, ते गुरु अर्जन साहब जो पिता गुरु ने कहा कहा कदी नहीं मोड़िया और आगे आ सेवा दा सदका ए गुरुगद्दी ए इलाही जोत। हुण गुरु रामदास पातशाह ने कृपा करके गुरु अर्जन साहब नूं बख्श दित्ती। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बयन, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नयन। कि हुण पंजवी जोत गुरु अर्जन साहब गुरगद्दी ते बैठे ने, जेड़े प्रमाण पुरख ने, ते पट कहंदा है अगर दर्शन करने ने इन अखां दे नाल तां गुरु अर्जन दे करो, क्योंकि दर्शन कीते हैं। जन्म मरण सौर जांदा है तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी घटिए। इस बाणी इतिहास तो आप सिख्या लैनी, अपने गुरु का हुक्म मनना, सेवा करनी, सिमरन करना, अपने घर विच अपने मां बाप वड्यां दा क्या मनना, उन्हां दा आदर करना, उन्हां दी आग्या विच चलना निहायत जरूरी है। क्योंकि कहंदे ने जिन्हें मां बाप की सेवा नहीं की, वो कितना भी दान पुन करे, वो कितना भी तीर्थां ते जावे, वो कदी सफल नहीं हुंदा। मां बाप की सेवा की थी, समझो।